राम नमस्ते सलाम वालेकुम बंदगी साहिब हालेलुया आमीन एंड वेलकम वेलकम टू द बिग शो वी आर जस्ट अबाउट 17 मिनट्स आफ्टर 9 o'clock इट्स अ ब्यूटीफुल डे ऑन द आउटसाइड इट्स अ वंडरफुल डे एंड वी आर सो हैप्पी टू हैव यू हियर ऑन संगीत 106 दिस इज अस थैंक यू वेरी मच पंप एंड वाइब्स ऑफ कोर्स अनदर एक्सीलेंट ट्रबल ट्यूसडे ऋषि राम DJ Stefan X, full of vibe and energy, yeah, giving you all the tunes that you love, all your information, all your comedy, your theme, the trouble that is expected to go with the Tuesday, everything, all rolled into one, and that's what makes them the number one morning show across the board. We're saying across the board.